सब बुजुर्ग पर आ रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले हम चिंगार न वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेख बाके मुग अब्बा पाप देम बनो कई अमल फी चितू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामों ने